नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही मेरे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आज की सभा में प्रसारित हो रहे कार्यक्रम की रूपरेखा को। रूपरेखा को जानने से पहले आओ जान लेते हैं आज को दिन, तारीख व समय को। आज दिन है शुक्रवार को, तारीख है 11 सितंबर 2026। इवीन अपने स्टूडियो की घड़ी में समय भाव है 7:57। सो दोस्तों, जब अपने दिन तारीख समय को जाना है, आओ एक क्रम में जानते हैं प्रसारित हो विवाह कार्यक्रम की संक्षिप्त सी रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम सुनिए अपन भोर कार्यक्रम। भोर कार्यक्रम में सुने भक्ति भरे गीतन को, यही के बाद सुने पुनः प्रसारण कार्यक्रम में जो पूर्व प्रसारित कार्यक्रम है उन कार्यक्रम को सुने। जे कार्यक्रम सुने अपन 8 बजे से 10:30 बजे तक, 10:30 बजे से 11 बजे तक सुने। आज की बात 11 बजे से 12 बजे तक सुने। बात तो वहीं 12 बजे से 1 बजे तक सुने लोकरंग कार्यक्रम। 1 बजे से 3 बजे तक सुने सतरंगी कार्यक्रम। 3 बजे से 3:30

0: बजे तक सुने बुंदेली गीत, बुंदेली गीतन को आनंद लें। 3:30 बजे हैं सुने, 4 बजे तक शुभकल कार्यक्रम, 4 बजे हैं सुने, 4:30 बजे तक हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, 4:30 बजे 5 बजे हैं सुने अपन खेत खलियान, और आखिरी कार्यक्रम सुने 5:30 बजे हैं 6 बजे तक बिरहा बुंदेली। सो दोस्तों जी, आज की सभा में प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की रूपरेखा थी, आज शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर से। भोर कार्यक्रम में सुने थे भक्ति भरे गीतन को, जिनमें सबसे पहले गीत सुने थे अपन चंद्रभान कुशवाहा जी के स्वर में। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में।
1: केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे, केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे, भजन ना पायो।

बाल भय भूरे गर्व भय सूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे गर्व भव सूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हट्टी।

आसुमरो हरदम हर के लाने मांगो उनसे जो है जाने बिना करे एक बहाने। सुमरो हरदम हर के लाने मांगो उनसे जो है।

भी तारे भव सागर से पार उतारे, जब जो जावे इनके द्वारे पापी से पापी भी तारे भव सागर से पार उतारे। तो इन खोनी तट अरे हाँ

0: करो हरि जगत जगतार भजन करो हरि जगत जगतार भजन करो हरि जगत।
1: आड़ी सर से

0: दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वही दिन वही वार जिसका हम बेसब्री से करते रहे थे इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और
0: सुजल का सादर नमस्कार।

0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जवानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ हर कोना हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें यह संकल्प और व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय, इस बार धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में यह संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है स्वच्छ सुजल गांव के अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज वन में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करने ओपन डिफिकेशन फ्री यानी ODF भारत बनाना था और फेज टू में हर गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छ का तुमको याद है कि ना देश के सभी गांव ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब यह ना कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त गांव यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, जिसे हम ODF भी कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता और वहां की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुधार लाती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचड़े का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचड़ा और जल का जमाव ना हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे नहीं।
1: अच्छा, यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.01 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदा जल प्रबंधन और 5.32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बना

0: रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यवहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांव की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन

0: प्लन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे यह सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना, आपको और ये आपके क्षेत्र में क्रियान्वित हो, इसके लिए आप लोगों

0: जल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, कैसे?
0: अलग-अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
0: मेरा काम सबको बीमार बनाना। चलो तुमको रामपुरा गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहां पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। वहां पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुरा गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजय कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।
2: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों और कूड़े के ढेर से निकलकर कभी निष्क्रिय शौचालयों में, कभी गंदे घरों में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां शौचालय बनते तो हैं मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, वही तो बसती हूँ मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्कर्ष शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना। मेरा काम सबको बीमार बनाना।
3: घर के शौचालय तो है पर नल की टोटी खराब है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दे लेकिन सुनते ही नहीं। ऐसे शौचालय ना होने पर तो क्या हमें फिर से खेतों में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
2: ये है मेरी एक और जीत।
1: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय हैं और भी लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से भी शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: गांव वाले गांव में गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाए हुए कूड़ेदान का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
3: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गांव में जल भराव कर रहे हैं।
2: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं रखते, उसके रख रखाव का ध्यान नहीं रखते और गांव में भी कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ा दान का भी प्रयोग नहीं करते।
0: एक दिन गांव का एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर, आंखों में नए भारत के निर्माण का सपना लिए सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
1: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है? सब इतने दुखी क्यों हैं? और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
5: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ नहीं तो सच कह रही हूँ बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही ना हो।
1: सब समझ गया चाची, अब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये अस्वच्छता है।
2: मैं हूँ इन सब का कारण, मैं हूँ इन सब का कारण। बोलो क्या करोगे तुम, बोलो बोलो बोलो। हाँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो तुम्हें भी मैं अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूसरा और ये सब तुम्हारा किया धरा है? अब मैं सब समझ गया। देखो मैं कुछ दिनों में तुम्हारा कैसे सफाया करता हूँ।
2: मेरा सफाया, क्या करोगे, मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालय का रख रखाव नहीं कर रहे हैं, गीले कचरे सूखे कचरे के बीच

0: अंतर नहीं जानते, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे भी सभी लोगों पर मैं राज करती हूँ, उनका यही लापरवाही मेरी जीत है, लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजल।
1: दुष्का तुम गलत हो, यह काम अभी भी हो रहा है और हमारी गांव की जनता को समझ है। वह स्वच्छता को कायम रखने के लिए शौचालय में रख रखाव, गांव की स्वच्छता के लिए गीले सूखे कचड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय पर करती रही है, समझती तू उसका?
0: हाँ, समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है, लेकिन गंदा पानी तथा मलिन कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी काफी समय लगेगा।
2: दूषिका, गंदा जल प्रबंधन और मलिन कचरा प्रबंधन भी सभी गांव में विभिन्न माध्यम जैसे सोखता गड्ढा, घर और सामुदायिक स्तर पर वाटर सस्टेनेबल पॉन्ड बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड डेवाट्स मल का कीचड़ जैसे संरचनाओं से की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। सुजल गांव में स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है।
1: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी माताएं बहनें और बेटियों की गरिमा भी है। ये हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाते हैं, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों में शौचालयों का रख रखाव और उनकी सफाई करना, मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदा जल का निपटान भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
2: धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय की नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होकर सामुदायिक शौचालयों का भी रख रखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदा जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था, लोग इस दिशा में काम करने लगे। दूषिका बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर देखती है,
0: ये क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां साफ कर दी है, क्या हो रहा है, ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया है, दुर्गंध कहाँ गई, मच्छर कहाँ गए, गंगा जल नहीं फैल रहा, अरे अरे अरे गांव में से ये सब क्या हो रहा है।
2: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका। गाँव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रख रखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वहीं रहती हूँ मैं स्वच्छिका। अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है।

0: है।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, शिक्षिका की चमक मेरे गंदगी को निगल रही है, मेरी बीमारियों का साया खत्म होता जा रहा है, सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा। शौचालय का नियमित रूप से रख रखा हो रहा है, नाली साफ कर दी, घर पर ही कूड़े कचरे का निपटान हो रहा है, घर का गंदा जल

0: के किचन गार्डन में सोफ्टा गड्ढा में ही प्रयोग हो रहा है।
1: स्वच्छिका सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं। सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहरा रहे हैं।
2: खुले में शौच को ना कहो,
3: बीमारी को दूर भगाओ,
2: शौचालय साफ रखो,
3: स्वच्छ गांव बनाओ,
2: अपना कूड़ा कचरा करो सही निपटान,
3: तभी बनेगी गांव की शान।
1: दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मेरे को भी कि तुम सब सच में बदल सकती हो, तुम सब ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल दिया, अब मुझे जाना होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं। तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है, इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
0: अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदगी तो होनी ही है, एक दिन छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है, गांव में कूड़ा कचरा फैलने दो और जल जमाव होने दो।
4: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय और गंदगी से भी बीमारी बढ़ती है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
5: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है क्या? देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ।
0: औरतें ही तो करती है ये साफ सफाई, पुरुष को क्या हाथ लगाना, अब नहीं बोलोगी।
1: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सुनो, सब लोग शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
6: हम सब समझ गए हैं दूषिका, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और गांव में स्वच्छता रखेंगे और हमारा गांव ODF प्लस मॉडल बनेगा, तुम्हें दूर भगाएंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो।
1: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, सूखा और गीला कचरा को सही तरीके से निपटान करें, गंदा जल के लिए सोख्ता गड्ढा और सही तरीके से नालियों का निर्माण करें, साथ ही रख रखाव किया जाए, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, मलिन कचरा प्रबंधन के लिए गांव के आसपास FSTP बनाएं या पास के शहरी FSTP या STP में जुड़ें। गांव रंपरा अब नहीं रहा पहले जैसा, हर घर में शौचालय है, लोग कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं, गांव में जल जमाव नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका हार चुकी है। ये है असली स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर।
6: स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी है, हर दिल की अब तैयारी है, सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, यही है नए भारत की पहचान।
1: मजा आ गया ना, हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर रामपुरा गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हुई कमी को लेकर इस बात का नाटक खेला जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जन आंदोलन के जरिए बता भी रहे हैं कि ये मिशन भारत की प्रगति में योगदान दे रहा है। आइए इस संदर्भ में एक स्वच्छग्राही से की गई बातचीत सुन लेते हैं।
4: स्वच्छग्राही ये कौन होते हैं?
1: स्वच्छग्राही वे व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति गांव में जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं।
5: ऐसे ही एक स्वच्छ ग्राही हमारे बीच में है।
7: नमस्ते सर, क्या नाम है?
8: नमस्ते मैम, मेरा नाम दयाराम रजक है।
7: जी दयाराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से स्वच्छ भारत मिशन में जुड़े हुए हैं?
8: जी मैं ग्राम पंचायत जुगियाई से बिलोंग करता हूँ और मैं 2015 से काम कर रहा हूँ प्रेरक का। पहले स्वच्छ हितग्राही में मेरा चयन हुआ था, इसके बाद जनपद पंचायत से मुझे प्रेरक के रूप में रखा गया था आदरणीय शिव सर के द्वारा।
7: तो आप हमें दयाराम जी ये बताइए कि जो स्वच्छता ग्राही का सफर था, क्या क्या काम था उसमें, क्या क्या गतिविधियां आपके अनुसार की गई हैं और आपने गांव में जाके कैसे लोगों को अवेयर किया, वो थोड़ा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए।
8: जी जो हमारे गांव की गलियां हैं होती हैं, तो पहले ज़्यादा गंदगी रहती थी
7: जी,
8: तो इसके बाद क्या हुआ कि जनपद पंचायत से निर्देश अनुसार किए गए, तो हर गली हर मोहल्ले में जाके समझाया उनको, भाई ये बारे में बताया गया। इसके बाद शौचालय का निर्माण करवाया गया, उसमें भी हमारा अच्छी भूमिका रही। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे कि जिद्दी टाइप की कि नहीं बनवाना है, बाहर ही अच्छा लगता है, तो उनको भी समझा बुझा कर उनको भी अवगत कराया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो उसमें हमारी ही सुरक्षा है, तो उनको भी समझाया गया। उनके 12,000 राशि भी दी गई थी और स्टार्टिंग में तो मनरेगा से बनती थी जो कि सरपंच निधि द्वारा बनाई जाती थी, तो उसमें 9,000 थे
7: जी।
8: तो कुछ परिवारों की पहले बन गई थी 9,000 के टाइम, फिर इसके बाद शासन के द्वारा राशि बढ़ा दी गई थी, 12,000 हो गई थी, तो फिर 12,000 की राशि दी गई।
7: आपने बताया कि शौचालय बनवाए गए हैं सरकार द्वारा और नरेगा के माध्यम से बनवाए गए थे पहले के टाइम में, लेकिन अभी हम बात करें स्वच्छता को लेकर, तो हमें ये बताइए कि स्वच्छता की जब बात आती है और आपने क्योंकि गांव वालों के साथ मिलकर काम किया है, तो क्या लगता है आपको कि लोग कितना जागरूक हैं स्वच्छता को लेकर और शौचालय को लेकर?
8: मैम देखिए, जो पहले का माहौल था तो उसके समझाने पर और शासन की गाइडलाइन के अनुसार आज बहुत कुछ बदलाव हुआ है, यानी कि 99% बदलाव हुआ है। कुछ परिवार ऐसे हैं कि वो मानते नहीं, परिवार के कुछ सदस्य सब नहीं। आज की हमारी बहन बेटियां हैं तो वो तो कोई नहीं जाता बाहर जी, और कुछ लोग हैं जो खेत खलियान वाले हैं वो चले जाते हैं बाहर, बाकी बहन बेटी हमारी नहीं जाती।
7: आपके अनुसार आपका गांव जुगियाई है और आपने वहां भी काम किया होगा, तो आपके गांव जुगियाई में कितने प्रतिशत शौचालय बने हुए हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है?
8: देखिए मेरे जुगियाई पंचायत में 480 परिवार हैं
7: जी,
8: 480 परिवार में 101 शौचालय का निर्माण हुआ है।
7: 101
8: जी मैम, और ऐसा कोई नहीं व्यक्ति है, मैं बता रहा हूँ जो खेत खलियान वाले हैं वो निकल जाते हैं घूमने फिरने, इसके अलावा मेरे यहाँ ऐसी कोई गली नहीं मिलेगी आपको जहाँ गंदगी हो, यानी कचरा भी कचरा गानी में फेंकते हैं, क्योंकि मेरा गांव जी मैम क्या है कि मेरा गांव जो है आदर्श ग्राम पंचायत है।
7: अच्छा,
8: जी मैम, तो उस टाइम से और आज देखिए तो शायद निवाड़ी जिले में कोई गाँव ऐसा हो।
7: बहुत बढ़िया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि स्वच्छता को लेकर आप खुद भी अवेयर हैं और अपने गांव के लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब हम कचरे की बात करते हैं तो सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों एक साथ ही डालते हैं ज्यादातर लोग, इस पर लेकर आपने क्या अवेयरनेस क्रिएट करी है गाँव में?
8: जी नहीं, मैं सूखा अलग जाता है क्योंकि मेरे गाँव में कचरा गाड़ी भी अवेलेबल है, जाती है सुबह से, तो सूखा अलग और गीला अलग जाता है। और डैम भी बनाए गए हैं हमारे महोदय सरपंच के द्वारा।
7: अच्छा
8: जी, तो सूखे का अलग है और गीले का अलग है।
7: अच्छा, इसके मैनेजमेंट के लिए क्या कोई टीम गठित की गई है अभी है या नहीं है, या कैसे इसको मैनेज करते हैं कि गांव वाले सूखा और गीला कचरा अलग अलग करें?
8: नहीं, वो तो गाड़ी जाती है।
7: हाँ।
8: तो हमारी जो माँ बहन है तो उनके द्वारा सूखा अलग डाल दिया, दो डिब्बे लगे रहते हैं कचरादानी में।
7: अच्छा, गाड़ी में कचड़े के डिब्बे अलग अलग लगाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं एक गाड़ी नहीं, होती है उसमें लिखा होता है इसमें गीला इसमें सूखा, लेकिन जहाँ वो एक ही जगह रहा है
8: अलग अलग डिब्बे डले हुए हैं, और जो निर्माण हुआ है सूखे का अलग है और गीले कचड़ा का अलग है।
7: आपके कुछ चुनौतियां भी आपने देखी होंगी जब, क्योंकि लोगों को जब आप अच्छी बात बताते हैं तो बहुत कम हजम होती है, तो वो क्या चुनौतियां थी आपके?
8: कुछ लोग थे ऐसे जिद्दी टाइप के, नहीं हम नहीं जाते, तुम होते कौन हो,

0: अपने हमारे जो सरपंच महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, जीआरएस महोदय हैं, तो इनके द्वारा ले जाके अपनी टीम को, और जो हमारे साथ और एक दो लोग ऐसे होते थे उनको ले जाके हम समझाते थे।
1: और क्या ऐसी चुनौती जो आप हमें बताना चाहें कि गांव में जब काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए, जब हम कोई काम करते हैं अच्छे के लिए जो काम करते हैं, क्या और चुनौती आपको ऐसी आई थी जो आप बताना चाहें हमें?
0: जी, तो क्या है, एक चुनौती की जो मेन सड़क होती थी है, तो उस मोहल्ले की मान लो कचरा रोड पे ही फेंकते थे लोग, मानते ही नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ी चुनौती आई थी कि माननीय विधायक जी तक से बताया गया कि ये मोहल्ला जो है नहीं मानता है, तो फिर उन्होंने व्यवस्था करवाई कि काम करो इसको हटा के सीधे सीसी करवा दो, यहाँ पे गली खत्म कर दो, तो उन्होंने सहयोग किया, तो आज सीसी हो गई मतलब, और वहाँ पार्क निर्माण करवा दिया माननीय विधायक जी के।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो अगर आपके गांव जुगियाई में अभी कोई जाता है देखने के लिए, अगर हम वहाँ पे पहुँच गए देखने के लिए, तो ये सब चीजें हमें वहाँ मिलेंगी? अगर कुछ नहीं मिलता है तो?
0: नहीं मैम, ऐसा नहीं है, और आदरणीय कलेक्टर महोदय भी महीने में एक दो बार जाते हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: बहुत अच्छी बात है दयाराम जी, और आपने हमें काफी कुछ बताया है। बस चलते चलते एक लास्ट सवाल है, आप गांव वालों को और क्या कहना चाहते हैं? जैसा आपका गांव एक अच्छा गांव बना है, स्वच्छ गांव बना है, और दूसरे गांव वाले को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कचड़े का, शौचालय का किस तरह से आपका देखभाल करनी चाहिए, या फिर उनको कैसे सही तरीके से निपटारण करना चाहिए इसको लेकर?
0: यही सभी से अनुरोध है हमारा कि जैसा कि जुगियाई ग्राम पंचायत है, और हमारे बगल में नीमखेरा ग्राम पंचायत है, और राजापुर ग्राम पंचायत है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले का जो माहौल था, आज वो गंदगी बिल्कुल नहीं है वहाँ पे।
1: तो स्वच्छ भारत मिशन सफल है कहीं ना कहीं?
0: जब ODF हुआ था उस टाइम सारे वरिष्ठ अधिकारी जो है, नेतागण हमारे जो सभी गए थे ODF के लिए, तो सभी ने उसका निरीक्षण किया था, इसके बाद ODF भी हुआ था हमारा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी, नमस्ते।
2: स्वच्छ ग्राही सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। एक स्वच्छता ग्राही बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
3: मुझे लगता है सुजल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है, और आगे भी सारे गांव को ODF प्लस मॉडल बनाकर ये जन आंदोलन भारत को आगे ले जाएगा।
2: सही कह रही हूँ स्वच्छता, मैं जब छोटा था गांव के स्कूल में जाता था, तो वहाँ पर हमारे गुरुजी सबको स्वच्छता की बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाते थे, और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज मैं सक्रिय होकर इस जन आंदोलन में सहयोग दे रहा हूँ।
3: तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
2: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई है, और इसलिए मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य एक स्वच्छता ग्रही की तरह काम कर रहा हूँ। स्वच्छता को हम सबका स्वभाव और संस्कार बनाने में, और बनाए रखने में, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: एक बात और, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की यह योजना हर स्तर, राज्य, जिला और ग्रामीण पर स्वच्छता समितियों का गठन कर स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित कर किया जाता है, तथा ग्राम स्तर के जल एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता संबंधी काम जैसे शौचालय निर्माण, व्यवहार परिवर्तन अभियान और ODF प्लस मॉडल सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है।
2: बस बस, मैं सब समझ गया। तुमको बताऊं, वह किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वह भी ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति की सदस्य है।
3: मैं समझ गई।
2: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर, जहां पर श्रोता साथियों ने के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में, यानी एपिसोड नंबर 1 में, हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को तो कहा था,
3: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
2: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उनमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोताओं के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन। सबसे पहला स्लोगन हमारे जमुनिया के दीप सिंह राजपूत जी ने भेजा है, आप लिखते हैं, आओ फिर एक बदलाव करें, देश का कोना कोना साफ करें, आवाज उठाओ, गंदगी मिटाओ। लालपुरा की दिनेश कुशवाहा जी ने भी एक स्वच्छता का स्लोगन भेजा है, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। और तीसरा और आखिरी हमारा स्लोगन हमें भेजा है प्रकाश कुशवाहा राजावर से, आपने लिखा है, बापू ने दिया था संदेश, स्वच्छ रखो भारत देश।
3: वाह, यह तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं। हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
2: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और उन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं?
3: तो भेजिए जल्दी से जवाब, सही जवाब भेजने वालों के नाम शामिल होंगे अगले कार्यक्रम में। हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
2: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे और वह आप जानते हैं कि आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छता स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उनकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
3: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
2: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल दर्पण दिवस क्या होता है? यह जानकारी के साथ जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको।
3: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर रखरखाव के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक के थैले को उपयोग ना करें, यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत सुंदर भारत।
2: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक सुनते रहिए आपका अपना रेडियो, रेडियो बुंदेलखंड 90.4।
3: फिलहाल स्वच्छिका और
2: सुजल को दीजिए जाने की अनुमति,
3: फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। यह कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है।

0: एक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का मैं आरजे वर्षा बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। और साथियों आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम एक अपना ऐसा कार्यक्रम होता है वो जी कार्यक्रम में अपन और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी भई चर्चा होकर रहेंगे। और जो चर्चा अपन और इनके लाने बहुत महत्वपूर्ण होते हैगी, क्योंकि हमारी जो बहनें हैंगी, महिलाएं हैं खासतौर से, वे क्या करती हैंगी के पूरे खानदान को ख्याल रखती हैंगी। सबको ख्याल रख लें लेकिन अपनों खुद को ख्याल रखो वे भूल जाती हैं। सो ऐसे में कहा होते कि उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, लेकिन वे अपनी परेशानी अपने घर वालों से साझा नहीं करती हैं। तो उनके लाने अपन और हैं जो रेडियो बुंदेलखंड पे कार्यक्रम हर हफ्ता लेके आउट हैंगे, ताकि अपनी बहनों को तनक जानकारी मिले कि अपनों स्वास्थ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं वो जितनों अपनी बाकी लोगन को होते है वो। ठीक है, तो आज हम जो विषय पे चर्चा करने वाले हैंगे वो है वो HIV/AIDS। ठीक है, तो अब इतने देखो बहुत सारी चीजें आती हैंगी कि HIV के बारे में एक तो जानकारी बहुत कम रहती हैगी, दूसरी जाएगी कि इसके बारे में कोनो बात ही नहीं करवो चाहू थे वो। ऐसा लगता है कि HIV कह दे तो समझ लो कोनो दुश्मन को, जानी दुश्मन को नाम ले लो है वो, सो इसे हमें बात ही नहीं करने। लेकिन आज अपन और कार्यक्रम में एक विषय को लेकर बातचीत करेंगे, तो अपने संगे एक्सपर्ट आज ही कार्यक्रम में उपस्थित हैंगे। तो हम पहले अपने एक्सपर्ट जो आई है मैम हमारी, उनसे हम चाहेंगे अपना परिचय भी हमारे श्रोता साथियों को दीवे।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा नाम ऋतु पांडे है। मैं जैसा कि मैडम ने बताया HIV/AIDS एक्सपर्ट हूँ झांसी क्लस्टर से। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा 12 अगस्त 2026 से 2 माह के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, सघन जागरूकता अभियान। इस अभियान का जो उद्देश्य है HIV/AIDS के प्रति सही जानकारी फैलाना, HIV/AIDS के लिए लोगों को प्रेरित करना जांच के लिए, और इससे जुड़े भ्रम एवं भेदभावों को दूर करना है।
0: बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही कहा है, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस खास कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। मैम जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं गांव में इस बात को लेकर, HIV को लेकर, एड्स को लेकर, तो पहला सवाल यहां पर आता है कि HIV क्या है और यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है।
1: HIV यानी कि एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें यह वायरस जो है हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देता है, जो हमारे शरीर की एक सैनिक होते हैं जो रक्षा करते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, तो ये उसको प्रभावित करता है। और यदि समय पे इसकी जांच और उपचार ना मिले तो व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है,
0: यानी बहुत सारी और समस्याएं उसके साथ पैदा भी हो सकती हैं, आपके कहने का ये मतलब है।
1: जी बिल्कुल
0: मैम, अगर हम इसमें बात करें कि HIV और AIDS, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि हम लोग एक ही मानते हैं इसको, या कोई नहीं मानता है, कोई अलग अलग मानता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि HIV और AIDS में अंतर क्या है आखिरकार।
1: देखिए HIV एक वायरस है और AIDS HIV संक्रमण की एक उन्नत अवस्था है, जिसमें कि शरीर में लक्षण आने लग जाते हैं विभिन्न बीमारियों के। हर HIV संक्रमित व्यक्ति को AIDS हो ऐसा जरूरी नहीं है। सही समय पर ARD दवाएं लेने से व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है, और हो सकता है HIV से AIDS की अवस्था से व्यक्ति पहुंच ही ना पाए।
0: बिल्कुल, तो मैम जब भी कोई बीमारी की हम बात करते हैं या किसी वायरस की बात करते हैं या उसकी चपेट में हम आते हैं, तो हमारा पहला सवाल होता है कि आखिरकार इसके लक्षण क्या होते हैं, या HIV के जो संक्रमण होते हैं वो किन कारणों से फैलते हैं।
1: देखिए HIV मुख्य रूप से 4 कारणों से फैलता है, जिसमें सबसे पहला कारण है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। दूसरा कारण है संक्रमित रक्त या रक्त से बने उत्पाद के संक्रमण से। संक्रमित सुई या सिरिंज साझा करने से HIV संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को गर्भावस्था में, प्रसव या स्तनपान के दौरान यह बीमारी हो सकती है।
0: जी, यानी कि जहां पर हम बात करते हैं HIV, तो वहां लोगों का दिमाग जो होता है वो एक ही जगह जाता है कि HIV यानी के गलत तरीके से या असुरक्षित यौन संबंध इन्होंने बनाए होंगे, तभी जाके ये समस्या या बीमारी इनको हो गई है। तो कई बार तो लोग इसी डर की वजह से इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो मैम अगर हम बात करें कि क्या HIV जो है वो हाथ मिलाने से, साथ बैठने से या खाना खाने से भी फैल सकता है।
1: देखिए बिल्कुल भी नहीं फैलता है, ये एक बिल्कुल सरासर मिथ है, भ्रांति है लोगों के मन में। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ उठने बैठने से, साथ में खाना खाने से, एक बर्तनों का इस्तेमाल करने से, मच्छर के काटने से, कैसे भी सामाजिक

0: संपर्क से ये नहीं फैलता है। इसलिए एचआईवी से जी रहे व्यक्ति के साथ हमें इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बीमारी से नहीं डरता है बल्कि आसपास का जो वातावरण होता है, जो व्यवहार हो जाता है लोगों का, उससे वो बहुत जल्दी ग्रसित हो जाता है और बहुत गंभीर परिस्थिति उसकी आ जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके आसपास क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये बीमारी है, तो उससे जैसे आप नॉर्मली सबसे बात करते हैं वैसे ही उससे भी आपको बात करनी है। मैम, अगर इसमें हम एक चीज और आती है बचाव की, तो क्या एचआईवी से बचाव के लिए क्या सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएं और कंडोम का सही और नियमित उपयोग करें। रक्त चढ़ाने से पहले कोई भी हमेशा उसकी जांच सुनिश्चित करें कि कहीं किसी एचआईवी संक्रमित का ब्लड तो आपको नहीं चढ़ाया जा रहा है। इंजेक्शन या सुई हमेशा नहीं इस्तेमाल करें, किसी के साथ भी सुई साझा ना करें। गर्भवती महिलाओं की समय समय पर एचआईवी की जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि उसके होने वाले बच्चे को समय से, अगर किसी महिला को एचआईवी है तो समय रहते उसके बच्चे को कम से कम उस वायरस से बचाया जा सके।
1: जी बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही कहा है। और ये बहुत खतरनाक होता है जब एक माँ से बच्चे में ये बीमारी फैलती है। मैम, इसकी जाँच की अगर हम बात करें तो कब और कहाँ कराई जा सकती है इसकी जाँच?
0: यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी का जोखिम, संक्रमण का जोखिम हुआ है या वो अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में जानना चाहता है, तो एचआईवी की जांच करानी चाहिए। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आईसीटीसी सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर होते हैं, जहां पे जांच और परामर्श निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। जांच के लिए किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में जाकर इसकी जानकारी ली जा सकती है।
1: बिल्कुल, और सरकार इन चीजों को लेकर बहुत अवेयरनेस भी फैला रही है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, हर जगह एचआईवी के आपको पोस्टर लगे मिलेंगे कि हमें अवेयर रहना है, सुरक्षित रहना है। हर चीज आपको, यहां तक कि फ्री में सारी फैसिलिटी दे रही है, फ्री में आपका पूरा इलाज भी करा रही है सरकार। लेकिन फिर भी मैम, अगर हम इसमें देखें कि लोग जांच कराने में झिझकते क्यों है आखिरकार?
0: ये इसका जो मुख्य कारण है एचआईवी को लेकर, समाज में फैली हुई गलत धारणाएं, डर और कलंक है। कई बार लोग यही सोचते हैं कि एचआईवी की जांच कराने का मतलब है सीधा कि मुझे एचआईवी है, जबकि ऐसा नहीं है। जांच कराने का मतलब होता है हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जानने के लिए जांच कराते हैं, ताकि अगर हम समय पे इसका उपचार शुरू करें। और एचआईवी की जांच की जानकारी और परिणाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, इसकी जानकारी किसी को भी साझा नहीं की जाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे साथ एक सर और भी हैं जो इस पर विस्तार पूर्वक से और जानकारी देंगे।

0: सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगी कि आप भी अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय हमारे श्रोताओं को जरूर दीजिए।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड को। जी, मेरा नाम शैलेन यादव, मैं क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर और दिशा क्लस्टर झांसी से हूँ, और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आमंत्रित किया, इसका आपको अपना बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: जी सर, सर मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि हम यहाँ पर HIV की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति

0: कि यहाँ पर एचआईवी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है, तो उसे आगे क्या करना चाहिए?
1: देखिए मैडम, जैसा कि हमारी अभी कई आपने प्रश्न किए हमारी मैडम से, उन्होंने
0: जी
1: कई विषय में और आपको एचआईवी के विषय में बताया। यदि इस विषय में यदि कोई व्यक्ति या महिला या कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले उसे धैर्य या घबराना चाहिए नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी घबरा जाए, धैर्य अपना आपा खो दे। सबसे पहले उसको अपनी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए यदि पॉजिटिव आ रहा है। इसके साथ साथ ही वह यदि संक्रमण की पुष्टि उस पर पॉजिटिव आती है तो व्यक्ति को संबंधित अपने नियरेस्ट आईसीटीसी केंद्र से जाकर के वो एआरटी सेंटर चला जाए, वहां पर वो आवश्यक परामर्श ले। इसके साथ ही साथ वो एआरटी की दवा नियमित रूप से लेना चाहिए एवं एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का जीवन उतना ही है एक सामान्य व्यक्ति के इतना जितना वो एचआईवी पॉजिटिव का व्यक्ति होगा।
0: जी सर, इसमें एक और बात यहाँ पर आती है कि क्या एचआईवी का इलाज संभव है, क्योंकि कई बार मन में ये सवाल आते हैं लोगों के कि एचआईवी हो गया मुझे तो अब मुझे मरना संभव है, तय है मतलब मेरा मरना। तो जो एआरटी दवाएं मिलती हैं वो किस तरह से मदद करती हैं लोगों की एचआईवी में?
1: देखिए मैडम, जैसा कि एआरटी से या कोई भी एचआईवी व्यक्ति से नहीं मरता है, ये तो एक मिथ्य है।
0: जी
1: वर्तमान समय में एचआईवी को जो शरीर में अगर पहुंच रहा है व्यक्ति के शरीर में, यदि एचआईवी का वायरस आ गया है तो उससे क्या है कि हमारी एआरटी की जो दवा है वो उस वायरस को नए वायरस से पनपने से रोकती है। जो हमारा एंटी रेंटोवायरल थेरेपी है एचआईवी को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। एआरटी की दवा जो है वायरस की मात्रा को कम करती है, रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको सुदृढ़ करती है, मजबूत बनाती है।
0: जी।
1: साथ ही साथ व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है और इसके साथ ही हमारे नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है।
0: जी सर, यहाँ पे अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो अगर एचआईवी संक्रमण होने पर बच्चे को संक्रमण से कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि महिला में अगर ये संक्रमण पाए गए हैं तो उसके जो बच्चा है गर्भ में उसको कैसे इस संक्रमण से बचाया जा सकता है?
1: जी मैडम, इसके लिए क्या है कि गर्भावस्था में जब भी कोई गर्भवती महिला हमारी गर्भावस्था में हो उस समय उसका एचआईवी का टेस्ट अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उस गर्भावस्था के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी एचआईवी की जांच जरूर सुनिश्चित करवा लें। यदि कोई महिला एचआईवी पॉजिटिव पाई जाती है तो जल्द से जल्द उसको एआरटी के लिए उपचार के लिए जोड़ा जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह से उसका प्रसव और उसके बच्चे की देखभाल की जाती है जिससे कि माँ और उसके होने वाले बच्चे को एचआईवी के जोखिम को कम किया जा सके।
0: बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि समाज में एचआईवी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और भ्रम फैले हुए हैं, तो आप अक्सर क्योंकि फील्ड में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, तो वे कौन सी भ्रांतियां और भ्रम होते हैं जो आपको अधिकतर और धारणाएं होती हैं जो सुनने में और देखने में आती हैं एचआईवी को लेकर?
1: जी सबसे पहले तो भ्रम यह है कि एचआईवी छूने से नहीं होता है, साथ बैठने से नहीं होता है, गले लगने से, साथ में भोजन उसके साथ खाने से, इवन दैट उसके साथ उसके कपड़े यूज करने से, वॉशरूम यूज करने से, ये सारी मिथ्याएं हैं। इसके साथ एचआईवी का कोई भी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे शरीर में नहीं पहुंच सकता है। साथ ही साथ उपचार और नियमित एआरटी के साथ व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है, इसलिए हमें इन अफवाहों से बचना चाहिए और साथ ही साथ वैज्ञानिक सलाह पर हमें विश्वास करना चाहिए।
0: यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी है, मैं उसके साथ खाना खा रही हूँ, बात कर रही हूँ, उसके साथ एक ही घर में रह रही हूँ, तो मुझे कोई खतरा उससे नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मैं सामान्य उसके साथ भी वही बर्ताव करूँ जो बाकी सदस्यों के साथ कर रही हूँ। तो सर, इसमें एक और बात आती है कि अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ परिवार और समाज को कैसे व्यवहार करना चाहिए?
1: जी एचआईवी से जी रहे व्यक्ति के साथ सम्मान, सहयोग और सामान व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ उसके अलग या थलग भेदभाव नहीं करना चाहिए। परिवार का भावनात्मक सहयोग उपचार को नियमित रखने में बहुत मदद करता है। हमें बीमारी से बचाव करना चाहिए, व्यक्ति से दूरी नहीं बनानी चाहिए।
0: जी सर, आजकल हम देख रहे हैं कि युवा वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है, लेकिन क्योंकि जब जांच की बारी आती है और खासतौर से किसी ऐसी बीमारी की, एचआईवी जैसी बीमारी की, तो युवा हमारे सबसे पीछे भागते हैं, वो आगे नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बात चार लोगों में फैलेगी, मेरे दोस्तों को पता चलेगी तो मेरी छवि क्या बनेगी दूसरे लोगों के सामने। तो सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा है उनको एचआईवी से बचाने के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए?
1: जी मेरा तो युवाओं से यही संदेश है कि एचआईवी के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, गलत धारणाओं से बचें, अफवाहों से बचें, जिम्मेदारी और सुरक्षित व्यवहार अपनाएं, किसी भी जोखिम की स्थिति में बिना डरे झिझक के एचआईवी की जांच

0: कराएं, सही जानकारी, सुरक्षित व्यवहार और समय समय पर एचआईवी के बचाव के महत्वपूर्ण साधन अपनाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को आज के इस कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में दी हुई है। अंत में सर, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मेरा सभी श्रोताओं से यह संदेश है कि एचआईवी के बारे में जानकारी रखें, एचआईवी की जांच को लेकर डरे नहीं, जरूरत पड़ने पर आप उपचार लें, साथ ही एचआईवी से जी रहे लोगों के साथ भेदभाव न करें बल्कि उनका सहयोग करें। यदि एचआईवी छूने से नहीं फैलता है, न गलत जानकारी से फैलता है, हमें साथ ही साथ एक हमारा हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है जिसका नंबर है 1097। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी आपको एचआईवी के विषय में जानकारी चाहिए या लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें, जिससे भी जो भी आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न है, उसको आप पूछ सकें और अपनी धारणाओं को, मिथ्याओं को दूर कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से चल के हमारे इस कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने दी हुई है। और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हमारे जो भी श्रोता हैं, जिनके मन में कुछ भी भ्रांति या भ्रम चल रहे होंगे, वो जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर आप और अधिक जानकारी हमसे चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 9219207749, और सर ने जो नंबर आपको बताया था एक बार फिर से सुन लीजिए। सर एक बार फिर से वो नंबर बताएंगे, टोल फ्री नंबर
0: जी है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1097।
1: इस नंबर पर आप टोल फ्री है, आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, तो फ्री में आप अपनी जानकारी इससे ले सकते हैं। आपको आपकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, तो बेझिझक होकर आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह से जाने का होता है समय, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। फिर होगी आप सभी से मुलाकात एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जुड़ के नमस्कार राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहने अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज़्यादा बरसात को हो गई हैगी, ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथी अन्य अपनी बोनी भी नहीं कर पाए।

कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई कर रहे थे वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकत हैंगे, जो भगवान जो रथ हैंगे और भगवान के संगे संगे जो

0: दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मोनी नहीं भैयेगी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रथ है वो, और खेती भी रथ हैगी, और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं यानी कृषि वानिकी जो करते हैं, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा है वो, और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रथ हैंगे काफ़ी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकत है वो। तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जासे पहले अपन एक नज़र डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनो का कथे गो, मौसम हमारे लाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते है गो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संग हैं वर्षा, तो भी मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों, उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई के लाने फसलन को निगरानी करत रहे, साथ ही में खेत में पाए जावे बारे रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मैनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों, आवे बारे 3-4 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60-80% बादल छाये रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14-17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे बारे 3 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60-80% बादल छाये रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संगे में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे, साथ में यदि जरूरी हुए तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इमें 1 लीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रीबैंक सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवे, तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुज्जे। यदि दिखे तो कारटप हाइड्रोक्लोराइट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवे। जिन किसान भैयन की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी, वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवे। बादल छाये रहवे की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियन में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी, फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखवे की संभावना बनी हैगी। ईखो नियंत्रण करवे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 EC 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है वो, इके नियंत्रण हेतु क्लोनोफॉस 25 EC दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंद गलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है गो। सो साथियों, इके लाने बचाव हेतु आपको मेटालेक्जिल मैनको जेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज्यादा हरी घास ना खान देवे, नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाये रहवे के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4-5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे, तथा इके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे, संगई में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों, आप सब जने सुन रहे थे जानकारी मौसम आधारित जानकारी, और जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
0: तो साथियों

अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती, कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: मेरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद और उर्वरक की मात्रा, इरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैरीगोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं। मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट

डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफा कारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है, दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किशन भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुड़ाई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम 60 दिन, 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन, नॉर्मली तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेंगे, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये एक नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पर जो त्योहार आते हैं हमारे, रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है, दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किशन भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी, पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस, तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरा का दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा 2-3 टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बता रहा हूं। 1 एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है, 43,560, लगभग आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग

और नॉर्मली आपके 6000 बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5000 ही बच गए, और 750 से किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4000 किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया वो वाली है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है, वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़ यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने ऐसा बताया कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो, अल्टरनेटिव ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप एक एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है, मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है, तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो कि जब आप डाली फूटान की अवस्था में हो तो आप हॉस्टल ले लो कि ज्यादा से ज्यादा डाली फूटान का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो एक माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसकी वजह वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0-34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, फर्टिलाइजर वगैरह में कुछ ना करो तो सिंपल, पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले DAP डाल दो आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी आएगी। 2 वेराइटी अलग अलग करो, 2-3 टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1000 भी टन 30-40 रुपये किलो चला गया तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50-60 हजार प्रति एकड़ 2-3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल उस पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी इल्ली की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है।

या अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है, जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है, तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो, या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45 से 60 दिनों में हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है, तो वहां इल्लियां ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ पे इल्लियां ज्यादा है, तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्लियां आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें, कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है, और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है। और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होगे, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसियस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मॉनसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6 से 7 हजार पौधे लगाना है, इसमें 10 हजार पौधे लगाने, और देसी वाला गलगोटा कर देना है, आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8 से 10 हजार पौधे लगाए हैं, तो आपका 4 टन भी 5 टन भी प्रोडक्शन आ गया, और 10 रुपये भी रेट आ गया, तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएगा। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो, कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो, और उसमें जमीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है, जिसको रूट एक्जुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको एवॉइडेंस बोलते हैं, कि मतलब कॉन्टेक्ट, जड़ से कॉन्टेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने 3 पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है, कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के 1, 2 या 3 पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको 2 वेराइटी पसंद करनी है, और 3 या 4 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको, जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे 2 रुपये भी किलो बेचा था और 120 रुपये भी किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है 40-50-60 हजार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बबर ऐसा करे कि आपका 4 से 5 टन प्रोडक्शन आए और 50 रुपये किलो बिके, 2-2.5 लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं, कि जैसे हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि खास करके पोमोग्रेनेट, यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान है, जो ऐसा लगाते हैं, 2-2, 3-3 प्लांट लगाते हैं 2 साइड में, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पे लगा देते, फिर उस तरफ नहीं लगाते, फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो गोलाई में, हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर, आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको, कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, तो आपको मानसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड़ जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल

या तो मे में लगाते हैं, तो पपाया छोटा सा रहता है तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो। लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है, कि एक एंगल से नहीं आप मल्टीपल एंगल से देखो आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा 3 टन 4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया, कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किशन भाइयों खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यावसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

विधा बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 चार पे आप ही बिना अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और वो विधा को आनंद लेते हैं। सो आज सुने अपन विधा आलाखों और आलाखंड को अपन आनंद लें। और ये आलाखों गा रहे हैं बनमाली वर्मा जी। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ सुनते हैं प्यारे से आलाखों।

ब्रह्मा चढ़ गए चतुरंगी पर रस पे दुल पे उदय चिंदराए। गज मनसुख पर मल खे चढ़ गए सारी लड़का भय सवार सज गए

0: इसमें हम फिरते हैं तेरी करें बड़ाई जाए, जब यह बात सुनी जोगी की रानी बहुत खुशी हो जाए।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हते ही अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में और अपन सब जनन ने सुनो जो आज को कार्यक्रम विधा बुंदेली। ये विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन ने सुनो जो आलाखों, ये आलाखों गा रहे थे भैया बनमाली वर्मा जी। अब दोस्तों आज के कार्यक्रम को इतना ही संपन्न होवे को समय होते हैं, सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक पिलाने नमस्कार। विधा बुंदेली
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: एक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: वास्तविक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सावन करो जात ससारे चैन जिग्या में नैया, ओ नैनन धार लगी असुंगन की रो।

0: एक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

घन घोर घटा छाई सावन की चीज आई, घन घोर घटा छाई।

0: अनेक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

बैठक भोला पदन संभाले कलिया सगरी पंख पसारे कलिया सगरी पंख पसारे ले तन दस

ब्रह्मा चढ़ गए चतुरंगी पर रस में दुल पे उदय चिंदराए। गजमन सुख पर मलखे चढ़ गए सारी लड़का भय सवार सज गए

नजर ऊ डल के पड़ गो पीछे घोड़ा दियो लगाए जहाँ पे बाज लगो माहेल को घुस गए हिरन वहाँ पे जाए घुस गए उदल बाज के अंदर देखो हिरन एक भी लाए गुलसाया

बना फल आय ब्याय हुआ जब अमर सिंह को हम भी वहाँ पे पहुँची जाए। मरे के नीचे ठाड़ी थी तुमने कीनी मारी आए, कैसे बात छिपाओ तुमसे अब यहाँ बात छिपेगी ना। ठीक पहचानो तुमने बिजमा मेरो नाम उदय चंद्रा।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: उतार दियो गगरी लाला दे होने गो तुम्हारे के हम आई सुनो
1: गगरी तोरी भौजी चबई उतर है गगरी तोरी भौजी चबई

अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है।

0: लेकिन हम के वो है, तुम कह रही के दो बहने हैं, हमें नेक में जो नहीं जाने मालूम का जाने
1: पहचान
0: क्या वो है। प्राणन से प्यारी हो जाई, ध्यान से सुनियो बात हम आई, ध्यान से सुनियो बात हम आई, कादे हो गगरी उतराई, कादे हो गगरी उतराई।

0: बिटिया अभी सब खुश रहे और दोनों को लड़ की शान बढ़ावे जो ही है एकदम से नेगे में जाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जा राज दुलारो कुल को है उज

पज को खूबे बढ़ावे पर्यावरण को शुद्ध बनावे पर्यावरण को शुद्ध बनावे सुला भई अरे ला भई हाँ ला भई ला

संदेश सुन लो भैया जो संदेश खुशहाल बनो रे अपनो देश खुशहाल बनो रे।

পেটে ভরো হে কইনা, কইনা উনকো পেট ভরো হে, কইনা উনকো পেট ভরো হে।

तो हमका काका जाने डबल बेड की, हम ना माने डल्लब दे दो गद्दा जाने, रुपया 20,000। कोड़ी कोड़ी हम ना करें उदार कार की, कह दई दो मोड़ा के फलदान में जाने दे।

तो नई आइटम हम कहाँ चाहे टीवी पर जो है कूलर चाहे पढ़ी लिखी हमें मोड़ी चाहे शिक्षित हो पाए बार शिक्षित हो पाए बार किन्ने के हमारे

0: वास्तविक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92 19 20 77 49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गयो है। नमस्कार।
3: ये आवाज है बुंदेलखंड की।